0: sit up. Number 770021. Okay. Note kar liya. Is operation ka code word hoga. Daily friend. Aur yaad rakhiye. अगर मेरे साथ किसी तरह की चालाकी करने की कोशिश की गई तो ये कीमती इंफॉर्मेशन किसी दूसरे मुल्क को भेज दी जाएगी। और हाँ, इस डील के लिए उसी एजेंट को भेजिएगा जिसने मोनिका को गिरफ्तार किया था, ताकि हम उसे पहचान सकें। ओवर।
1: ब्लडी बास्ट।